समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

स्वर्धुनी विराजित मस्तकी शुभ्र जटा मुकुट मंडित सर्पमणि युक्त विराजित किशोर चंद्र भाली मिरवत भस्म चर्चित शुभ्र।

नीलकंठ दशभुज आयुधे सघट झलकति प्रलय चपले ऐसी खड्वांग त्रिशूल कपाल डमरु अंकुश पाश घंटा नागधरु पिनाक पाशुपत कमल तेजाकारु शुभ्रवर्ण आयुधे शुभ्र तेजस्वी शार्दुल चर्म वसन शुभ्र स्फटिक वर्ण गजाजिन मणिमय शुभ्र सिंहासन नाना रत्ने विराजित कैलासगिरी शुभ्रवर्ण वरिमंडप शुभ्र सहस्रयोजन स्तंभ विरहित सहस्रकिरण।

चंद्रशेखर चतुर्भुज पाशांकुशधर गदा पद्मयुक्त जे सुरतरु सुमन माला युक्त मल्लिका बकुल कमली विराजित इभ मुक्तावतंस डोलत शोभा अद्भुत कोणवर्णी हरिमध्या भुजंगवेणी जलजवदना आकर्ण नयनी द्वादशादित्य शोभा जघनी कांचीवरी झळकतसे मागे स्त्रिया वर्णिल्या बहुत निस्सीम रूप लक्षण युक्त ओवाळुनी टाकाव्या समस्त

कंसपंक्ती तैसे द्विजहासता झळकती मुक्तशुभ्रवर्ण मागुती हैमवतीचे झळकती दंतपंक्ती शुभ्र अत्यंत अधर प्रभेने आरक्त भासत डाळिंब बीज पक्क शोभत क्षणैक तैसे

पशमनी त्रिकाल जे सादर तव ध्यानी त्रिदेह विरहित ते शिवमानस सरोवर मराळिके जय जय विज्ञान चंपक कळिके।

प्राशित तोची झाला ऋषिशृंगी तेने ख्याती केली दशरथ यागी सौराष्ट्र राजा स्पर्शता करे मृगी दिव्यपुत्र प्रसवली सत्यवती मत्स्यगर्भ संभूत।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना, संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

0: भक्ति सुधा आत्मोन्नति का आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

रजत वर्ण निर्मल जो सूर्य कोटि समतेज विराजित शुभ्र आभरणी भूषित जगदानंद कंद गुणातीत स्वर्धुनि विराजित मस्तकी शुभ्र जटा मुकुट मंडित सर्प मणि युक्त विराजित किशोर चंद्र भाली मिरवत भस्म चर्चित शुभ

नीलकंठ दशभुज आयुधे सघट झलकति प्रलय चपले ऐसी खड्वांग त्रिशूल कपाल डमरु अंकुश पाश घंटा नागधरु पिनाक पाशुपत कमल तेजाकारु शुभ्रवर्ण आयुधे शुभ्र तेजस्वी शार्दूल चर्म वसन शुभ्र स्फटिक वर्ण

शेखर चतुर्भुज पाशांकुशधर गदा पद्मयुक्त जे सुरतरु सुमन मालायुक्त मल्लिका बकुल कमली विराजित इभ मुक्तावतंस डोलत शोभा अद्भुत कोणवर्णी हरिमध्या भुजंगवेणी जलजवदना आकर्ण नयनी द्वादशादित्य शोभा जघनी कांचीवरी झळकतसे मागे स्त्रिया वर्णिल्या बहुत निस्सीम रूप लक्षण युक्त ओवाळुनी टाकाव्या समस्त

तपस्य करी तो रंग दिसे शुभ्रमागुती। ओळी ने बैसल्या हंस पंक्ति तैसे द्विज हासता झळकती। मुक्त शुभ्र वर्ण मागुती हैमवतीचे झळकती। दंत पंक्ति शुभ्र अत्यंत अधर प्रभेने आरक्त भासत। डाळिंब बीज पक्क शोभत क्षणैक तैसे दिसती। कंठीचे मुक्ताहार संपूर्ण।

हर्ष भरित तव रवि अस्त पावला जप ध्यान कीर्तन करित शारदा गुरु जवळी बैसत अर्धयामिनी झालिया अकस्मात भवानी तेथे प्रगटली।

0: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात भक्ती सुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोते हो, आता सादर करत आहोत नव्या अभंग आणि भक्ती गीतांचा कार्यक्रम भक्ती रंग, प्रस्तुती भक्ती सुधा। श्रोताओ, सुनते हैं संत तुलसीदास की पदरचना। संगीत अरुण सराफ और स्वर राजन शेगुणशी और अरुण सराफ का।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना, संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

0: भक्ति सुधा आत्मोन्नतिचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।